श्रीकांत पारगांवकर के स्वर में आप सुन रहे थे भक्ति रचना, जिसे संगीत दिया था राम कदम ने। भक्ति संगीत कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं समर्थ रामदास स्वामी की भक्ति रचना रंजना पेठे के स्वर में।

रंजना पेठे के स्वर में आप अभी सुन रहे थे समर्थ रामदास स्वामी की भक्ति रचना। श्रोताओं, भक्ति संगीत कार्यक्रम के अंत में अब सुनते हैं संत चोखामेळा की भक्ति रचना उदयन काळे के स्वर में।

उदयन काळे ने गाई संत चोखा मेळा की सी भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अब हम समाप्त कर रहे हैं। यह कार्यक्रम आपने सुना रागम 24/7 DTH चैनल पर। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिति थी। सुनते रहिए भारतीय संगीत हर पल हर समय।

0: अब आप सुनेंगे डॉक्टर रवि किरण नाकोड़ का हिंदुस्तानी तबला एकल वादन, ताल एक ताल।
1: लिसन टू हिंदुस्तानी तबला सोलो बाय डॉक्टर रवि किरण नाकोड़, ताल एक ताल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राग मियां की तोड़ी में ख्याल गायन. आज के कलाकार हैं नंदिनी चक्रवर्ती. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पिनाकी चक्रवर्ती और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं रथींद्र नाथ चक्रवर्ती. तो आइए सुनते हैं राग मियां की तोड़ी में ख्याल गायन, कलाकार नंदिनी चक्रवर्ती.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी प्रेजेंट हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल्स. लिसन टू ख्याल इन राग मियां की तोड़ी. Our artist this morning is Nandini Chakraborty. Accompanying our artist on the tabla is Pinaki Chakraborty, and on the harmonium is Rathindranath Chakraborty. Listen to Khayal in Rag Miyaki Todi. Our artist is Nandini Chakraborty.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग मियां की तोड़ी में ख्याल सुन रहे थे। आज की कलाकार थी नंदिनी चक्रवर्ती। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पिनाकी चक्रवर्ती और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे रथींद्रनाथ चक्रवर्ती। यह है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग भाटियार में ख्याल गायन। आज के कलाकार हैं सुमिता रॉय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं देवाशीष सरकार और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं रतन भट्टाचार्य जी। तो लीजिए प्रस्तुत है राग भाटियार में ख्याल गायन, कलाकार सुमिता रॉय।
1: You were listening to Khayal in Raag Miyan Ki Todi. Our artist this morning was Nandini Chakraborty. Accompanying our artist on the tabla was Pinaki Chakraborty and on the harmonium was Rathindranath Chakraborty. This is Raagam 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the concert, we now present a Khayal in Raag Bhatiyar. Our artist is Sunita Roy. Accompanying her is Devashish Sarkar on the tabla and Rathon Bhattacharya on the harmonium. Listen now to Khayal in Raag Bhatiyar. Our artist, Sunita Roy.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग भाटियार में ख्याल गायन सुन रहे थे। कलाकार थी सुमिता रॉय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे देवाशीष सरकार और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे रतन भट्टाचार्य जी। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू अ ख्याल इन राग भाटियार। आवर आर्टिस्ट वॉज सुनीता रॉय। Accompanying her was Debashish Sarkar on the tabla and Ratan Bhattacharya on the harmonium. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। आज के कार्यक्रम में सुनते हैं शास्त्रीय गायन। कलाकार है विनय रामदासन। आपने प्रस्तुत किया राग शुद्ध सारंग सुनते हैं। विलंबित छपताल में निबद्ध रचना के बोल है ख्वाजा दीन अलिया, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है जाओ जी जाओ श्याम। आपके साथ हारमोनियम पर संगति कर रहे हैं उदय शाहपुरकर, तबले पर है भरत कामत। तो आइए सुनते हैं राग शुद्ध सारंग, कलाकार विनय रामदासन।

श्रोताओ, अभी आपने सुना विनय रामदासन द्वारा प्रस्तुत राग शुद्ध सारंग। आपके साथ हारमोनियम पर थे उदय शाहपुरकर, तबले पर थे भरत कामत। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं विनय रामदासन द्वारा

प्रस्तुत राग गोरख कल्याण विलंबित एकताल में निबद्ध रचना के बोल है प्रीत मोरी लागी और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है नेक कृपा कर आयो आयो रे। साथ संगत तबला अरविंद कुमार आजाद और हारमोनियम चैतन्य कुंटे। तो आइए सुनते हैं विनय रामदासन द्वारा प्रस्तुत राग गोरख कल्याण।

श्रोताओ, अभी आपने सुना विनय रामदासन द्वारा प्रस्तुत राग गोरख कल्याण। आपके साथ तबले पर थे अरविंद कुमार आजाद, हारमोनियम पर थे चैतन्य कुंटे। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिति थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है अमिताभ चटर्जी का सितार पर बजाया राग बागेश्री में आलाप जोड़ और झाला. विलंबित रचना रूपक ताल में और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present a sitar recital by Amitabh Chatterjee. He is accompanied by Vinod Pathak on tabla. First listen to Alap, Jod and Jala in Rag Bageshri. The Vilambit Gat is set to Rupak Tal and Drut Gat is set to Teen Tal.

0: अभी आप अमिताभ चटर्जी का सितार पर बजाया राग बागेश्री सुन रहे थे और लीजिए अब सुनिए राग मिश्र शिवरंजनी। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने।
1: यू आर लिसनिंग टू द सितार रिसाइटल बाय अमिताभ चटर्जी। नाउ लिसन टू राग मिश्र शिवरंजनी। ही इज अकंपनीड बाय विनोद पाठक ऑन तबला।

0: अभी आप सुन रहे थे अमिताभ चटर्जी का सितार पर बजाया राग मिश्र शिवरंजनी। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ सितार रिसाइटल इन राग मिश्र शिवरंजनी बाय अमिताभ चटर्जी। ही वॉज अकम्पनीड बाय विनोद पाठक ऑन तबला। दिस प्रोग्राम इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। सुनते हैं शास्त्रीय गायन, कलाकार है पंडित माधव इंगड़े। आपने प्रस्तुत किया राग बागेश्वरी सुनते हैं। विलंबित एकताल में निबद्ध रचना के बोल है मोहे मना, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है ओ मोरे लाल। तो आइए सुनते हैं राग बागेश्वरी, कलाकार पंडित माधव इंगड़े।

श्रोताओं, अभी आपने सुना पंडित माधव इंगळे द्वारा प्रस्तुत राग बागेश्री। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं पंडित माधव इंगळे द्वारा प्रस्तुत राग बिहा। विलंबित एकताल में निबद्ध रचना के बोल है धन धन रे, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है अब हो लालना। तो आइए सुनते हैं राग बिहा, कलाकार पंडित माधव इंगळे।

अभी आपने सुना पंडित माधव इंगड़े द्वारा प्रस्तुत राग बिहा। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिति थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए प्रस्तुत है राग बिलास खानी तोड़ी पर सितार वादन. कलाकार हैं शिव शंकर मुखोपाध्याय. आपके साथ तबले पर हैं देवाशीष चौधरी. तो लीजिए प्रस्तुत है राग बिलास खानी तोड़ी पर सितार वादन. कलाकार हैं शिव शंकर मुखोपाध्याय.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This morning we present Hindustani Instrumental Recital. Listen first to a sitar recital in the rag Bilash Khani Todi. Our artist this morning is Shiv Shankar Mukhopadhyay. Accompanying our artist on the tabla is Devashish Chaudhuri. Listen now to the sitar in the rag Bilash Khani Todi. Our artist Shiv Shankar Mukhopadhyay.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग विलास खानी तोड़ी पर सितार वादन सुन रहे थे। कलाकार थे शिव शंकर मुखोपाध्याय। आपके साथ तबले पर थे देबाशीष चौधरी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए प्रस्तुत है राग गुरजोड़ी तोड़ी पर सितार वादन। कलाकार हैं शिव शंकर मुखोपाध्याय। आपके साथ तबले पर हैं देबाशीष चौधरी। तो लीजिए प्रस्तुत है राग गुरजोड़ी तोड़ी पर सितार वादन। कलाकार हैं शिव शंकर मुखोपाध्याय।
1: You were listening to the sitar in the rag Bilash Khani Todi. Our artist is Shiv Shankar Mukhopadhyay. Accompanying him on the tabla is Debashish Chaudhuri. This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Continuing the concert, our artist this morning, Shiv Shankar Mukhopadhyay, now presents a sitar recital in the rag Gurjari Todi. Accompanying him on the tabla is Debashish Chaudhuri. Listen now to the sitar in the rag Gurjari Todi. Our artist, Shiv Shankar Mukhopadhyay.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग गुरजोड़ी तोड़ी पर सितार वादन सुन रहे थे। कलाकार थे शिवशंकर मुखोपाध्याय। आपके साथ तबले पर थे देवाशीष चौधरी। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम, 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a sitar recital in the rag Gurjari Todi. Our artist this morning was Shivshankar Mukhopadhyay. Accompanying our artist on the tabla was Debashish Chaudhuri. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: विश्वविद्यालय के संगीत विभाग में प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त रही हैं। पिछले 60 वर्षों से डॉक्टर मंडपा कशारदा कई प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन करती आ रही हैं। आपको कई संस्थाओं द्वारा विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर मंडपा कशारदा को आकाशवाणी द्वारा शास्त्रीय संगीत गायन में ए ग्रेड और सुगम संगीत में बी हाई ग्रेड प्राप्त है और आप ग्रेड 1 कंपोजर भी हैं।
1: बोर्न इन विजयनगरम टू श्रीमती विमला एंड श्री कृष्णमूर्ति, डॉक्टर मंडपा कशारदा वॉज इनिशिएटेड इन टू म्यूजिक एट एन अर्ली एज। शी रिसीव्ड हर इनिशियल ट्रेनिंग इन म्यूजिक अंडर श्री IVL शास्त्री एंड लेटर होन्ड हर स्किल्स अंडर द गाइडेंस ऑफ श्री कोमांडरी कृष्णमाचार्यलु। डॉक्टर मंडपा कशारदा रिसीव्ड हर PhD डिग्री for her thesis on the compositions of Patnam Subramaniam Iyer. She served for several years in the Department of Music of Andhra University. An A-grade artist of Akashvani and Doordarshan in Carnatic music and B-high in light music, she is also a grade 1 music composer. Dr. Sharada has performed more than 3,000 concerts in classical, devotional and light music in several platforms all over the country. She is also the author of 2 books, Swaratarangini and Kriti Manjari. Dr. Mandapa Kasharada is the recipient of a number of awards and felicitations.
0: आज के कार्यक्रम में डॉक्टर मंडपा कशारदा की संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्री महादासु नीलाद्री राव, मृदंगम पर श्री सुसरापु सुब्रमण्यम और घटम पर श्री सरस्वतुला हनुमंत राव।
1: In tonight's concert, Dr. Mandapa Kasharada is accompanied by Sri Mahadasu Niladri Rao on the violin, Sri Susarapu Subramaniam on the mridangam, and Sri Saraswatula Hanumant Rao on the ghatam.
0: Dr. Mandapa Kasharada aaj ke karyakram ka aarambh karti hain Begad raag mein Sant Tyagaraj ki rachna Bhaktuni Charitramu se jo ki Adi Taal mein nibaddh hai.
1: Dr. Mandapa Kasharada begins her presentation with Bhaktuni Charitramu, a composition of Tyagaraja in Begara Ragam Aditalam.

0: डॉक्टर मंडपा का शारदा की अगली प्रस्तुति है माया माला वगोल राग में श्याम शास्त्री की रचना नीलायताक्षी जो कि मिश्र चापू ताल में निबद्ध है.
1: शी नेक्स्ट प्रेजेंट्स अ कॉम्पोजिशन ऑफ श्याम शास्त्री इन माया माला वगोल रागम मिश्र चापू तालम.

0: अब सुनिए शुद्ध धन्यासी राग में मुत्तुस्वामी दीक्षितार की रचना श्री पार्थ सारथी जो कि रूपक ताल में निबद्ध है.
1: वी विल नाउ लिसन टू श्री पार्थ सारथी. इट इज इन शुद्ध धन्यासी रागम रूपक तालम एंड इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितार.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप डॉक्टर मंडपा का शारदा का कर्नाटक शैली में गायन सुन रहे हैं। आपकी संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्री महादास नीलाद्री राव, मृदंगम पर श्री सुसरापु सुब्रमण्यम और घटम पर श्री सरस्वतुला हनुमंत राव। कार्यक्रम को जारी रखते हुए डॉक्टर मंडपा का शारदा प्रस्तुत कर रही है कल्याणी राग में पल्लवी गोपालय्यर की रचना नीद चरण पंकज मुले, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: In tonight's national program of music, you have been listening to a classical vocal recital in Carnatic style by Dr. Mandapaka Sharada. She is accompanied by Sri Mahadasu Niladri Rao on the violin, Sri Susarapu Subramaniam on the mridangam, and Sri Saraswatula Hanuman Rao on the ghatam. Continuing her performance, Dr. Mandapaka Sharada will now present a composition of Pallavi Gopalayar in Kalyani Ragam Aditalam.

0: किया था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया श्री ससुरापु सुब्रमण्यम ने और घटम पर श्री सारस्वतुला हनुमंत राव ने। डॉक्टर मंडपा का शारदा आज के कार्यक्रम का समापन वृंदावनी राग में डॉक्टर मंगलम पल्ली बालमुरली कृष्णा द्वारा रचित तिल्लाना से कर रही हैं, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: दैट वॉज तन्यावर्तनम ऑन द मृदंगम बाय श्री ससुरापु सुब्रमण्यम एंड ऑन द घटम बाय श्री सारस्वतुला हनुमंत राव। Dr. Mandapa Kasharada concludes her this evening's presentation with a tillana of Mangalampalli Balamurali Krishna. It is in Vrindavani Ragam Aditalam.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के तहत अभी तक आप डॉक्टर मंडपा कशारदा द्वारा कर्नाटक शैली में गायन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे वायोलिन पर श्री महादासु नीलाद्री राव, मृदंगम पर श्री सुसरापु सुब्रमण्यम और घटम पर श्री सरस्वतुला हनुमंत राव। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यही सम्पन्न होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया।
1: With this we come to the end of tonight's national program of music, wherein we brought you a classical vocal recital in Carnatic style by Dr. Mandapa Kasharada. She was accompanied by Sri Mahadasu Niladri Rao on the violin, Sri Susarapu Subramaniam on the mridangam, and Sri Saraswatula Hanumant Rao on the ghatam. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani, Vishakhapatnam.

अभी आप सुन रहे थे सितार पर राग बसंत मुखारी, कलाकार थे पंडित गिरिराज। ये है रागम, डीटीएच पर हर दम हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे राग रागेश्री, जिसमें आलाप के बाद विलंबित और द्रुत गते होंगी तीन ताल में। That was राग बसंत मुखारी। You are listening to हिंदुस्तानी सितार रिसाइटल by पंडित गिरिराज। This is रागम 24/7 DTH anytime Indian music। Continuing the concert, now the artist renders राग रागेश्री।

ये था राग रागेश्री। अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में सितार वादन। कलाकार थे पंडित गिरिराज। संगत कलाकार थे तबले पर पंडित रामस्वरूप रतौनिया। हर दम हर समय डीटीएच रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सितार रिसाइटल बाय पंडित गिरिराज। द अकंपनिंग आर्टिस्ट वॉज पंडित रामस्वरूप रतौनिया ऑन द तबला। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 डीटीएच

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन. कलाकार हैं उस्ताद अमजद अली खां. राग है नट भैरव जिसमें आप सुनेंगे विलंबित और द्रुतगत दोनों ही गतें तीन ताल में निबद्ध हैं. संगत कलाकार हैं तबले पर इस्माइल दद्दू खां. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय उस्ताद अमजद अली खां. द रेंडिशन कमेंसेस विद द राग नट भैरव. द अकंपनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय इस्माइल दद्दू खां ऑन द तबला.

अब आप सुनेंगे उस्ताद अमजद अली खां से राग हेमवती। आप प्रस्तुत कर रहे हैं आलाप और एक गत जो रूपक ताल में निबद्ध है। तबला संगत की है इस्माइल दद्दू खां ने। नाउ लिसन टू राग हेमवती बाय उस्ताद अमजद अली खां।

आप सुन रहे हैं सरोद वादन, कलाकार हैं उस्ताद अमजद अली खान। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय उस्ताद अमजद अली खान। ये है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे उस्ताद अमजद अली खान से पीलू धुन, जो अद्दा ताल में निबद्ध है। कंटिन्यूइंग द सरोद रिसाइटल बाय उस्ताद अमजद अली खान, यू विल लिसन पीलू धुन।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन। कलाकार थे उस्ताद अमजद अली खां। संगत कलाकार थे तबले पर इस्माइल दद्दू खां। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय उस्ताद अमजद अली खां। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय इस्माइल दद्दू खां ऑन द तबला। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है गुलाम दस्तगीर खां का सितार पर बजाया राग भैरों में आलाप और जोड़. विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now bring you a sitar recital by Gulam Dastagir Khan. He begins his recital with an alap and jod in rag bhairav. The vilambit and drutgat are set to teen taal. He is accompanied on the tabla by Vinod Pathak.

0: अभी आप गुलाम दस्तगीर खां का सितार पर बजाया राग भैरव सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने। और लीजिए अब सुनिए राग शुद्ध सारंग, विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड अ रेंडिशन इन राग भैरव ऑन द सितार बाय गुलाम दस्तगीर खां। ही नाउ प्रेजेंट्स राग शुद्ध सारंग। द विलंबित एंड द्रुतगत आर सेट टू तीन ताल।

0: अभी आप गुलाम दस्तगीर खां का सितार पर बजाया राग शुद्ध सारंग सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू जस्ट हर्ड राग शुद्ध सारंग परफॉर्म बाय गुलाम दस्तगीर खां। ही वाज अकंपनीड ऑन द तबला बाय विनोद पाठक। दिस प्रोग्राम वाज प्रेजेंटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी भक्ति संगीत. हिंदुस्तानी भक्ति संगीत के कार्यक्रम के तहत अभी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे भजन. कलाकार हैं सौमिता पाल. तो लीजिए प्रस्तुत है सौमिता पाल से भजन.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. We present devotional songs. We begin the program with bhajan. Our artist is Shomita Paul.

0: हिंदुस्तानी भक्ति संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए अभी हम आपके सामने पुनः भजन प्रस्तुत करेंगे। कलाकार हैं अमिता चट्टोपाध्याय।
1: We now bring you भजन by our artist अमिता चट्टोपाध्याय।

0: हिंदुस्तानी भक्ति संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए अभी आपके सामने पुनः प्रस्तुत है भजन। कलाकार हैं सुचेता सरकार।
1: We now present भजन by our artist सुचेता सरकार।